खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।